ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरे उतारे डर भी उसे धरा रे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल जाने। बुद्धिहीन तनु जानिए सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति
1: हरि ओम अन्नपते नस्य नो देह्यनमीवस्य सुखमेना

की जय। दिस भजन सेंट्रलाइजेस ऑन भक्ति। भक्ति सिंपली मीन्स हैविंग अनकंडीशनल लव फॉर द फीट ऑफ भगवान विदाउट अ मोटिव। कैन यू इमेजिन भगवान श्री राम इन इज बालक रूप, इन इज चाइल्ड लाइक फॉर्म, इन द सिटी ऑफ अयोध्या। गोस्वामी तुलसीदास जी सेज स्टेप बाय स्टेप श्री राम वॉक्स टू द पैलेस विद द गुंगरूज अटैच्ड टू हिज फुट, टू हिज बोथ फीट, मेकिंग अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। द लॉर्ड ही लाफ्स, ही रन्स अवे, ही फॉल्स डाउन, ही स्टंबल्स प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड्स ऑफ अयोध्या। हिज मदर कौशल्या मां वुड रन एंड पिक हिम अप विद लिप्स लाइक द सन, स्पीकिंग अ फ्यू वर्ड्स एंड ट्राइंग टू टॉक, हैविंग अ मोस्ट वंडरफुल नोज विद हिज कर्ली ब्यूटिफुल हेयर। ही इज बीइंग फेड बाय हिज मदर कौशल्या। गोस्वामी तुलसीदास जी सेज इन दिस ब्यूटिफुल भजन, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड एज फुलफिलिंग एज लिसनिंग द कथा विद श्री राम इन हिज बालक रूप।